0: क्षेत्र बनने वाला है
1: एंड दैट कुड ऑल्सो क्रिएट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल जॉब्स. फॉर दैट रीजन मेनी इंडियन सेटलर्स हियर वेलकम द प्रोजेक्ट बट नॉट द आइलैंड्स इंडिजिनस कम्युनिटीज लाइक द हंटर गैदरर शॉम्पेन ट्राइब. Over 100 live in the island's rainforests with little contact with the modern world. The conservation group Survival International says a massive tourism push risks wiping out the tribe because it will lead to contact between them and other people. The island's other indigenous folk, the Nicobaris, are also worried. In 2004, they were displaced by the Indian Ocean tsunami as it washed away their homes by the coast. Tribal chief Barnabas Manju says Indian officials had promised to help them return.
2: आपका शेल्टर थोड़ा दिन के लिए यहाँ बनेगा, बाद में आपका वहाँ शेल्टर